0: अनुरोध
1: मुना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बारगंगा दुई गद्देया अध्यक्ष कुशल बहादुर थापा सम्पर्क नम्बर 98254 14 296

0: डैडी मंजल माया कर मिना बांच सक
1: अब हमी सब्जी बनने पक्का हो मेरे पास।

0: 89.6 मेगाहर्ट्ज।
1: हिमाल पहाड़ तराई।
2: कैंसर को संपूर्ण उपचार विराटनगर में। सबै प्रकारका क्यान्सरको उपचार, शल्यक्रिया, रेडिएसन सहित न्यूक्लियर मेडिसिन सेवाहरू उपलब्ध छन्। नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट क्यान्सरको उपचारका लागि यति एयरलाइन्स मार्फत दुई तर्फी निशुल्क टिकटको व्यवस्था गरिएको छ र उपचारका लागि पालो खोज्नु पर्दैन। विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल अन्तर्गत नेपालको नम्बर 1 क्यान्सर हस्पिटल विराट क्यान्सर इन्स्टिच्युट विराटनगर। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 97160025 30।
3: सर
4: हाँ आओ, तुमका टॉयलेट से आवे के देर हो गया संजू, कुछ समस्या हो गया का?
3: कुछ नहीं भवा है सर, टॉयलेट के बगल में सांप देखें, देर लाग के घूम के आवत रहें, एक छिन तक अगोरत के हलचल ना है की मरी गवा सांप हुई के जाने के बाद टॉयलेट जाए के आए।
4: मरी गवा सांप के चलावे के काम तो ना की हो?
3: नहीं चलाए सर।
4: विद्यार्थी भाई बहनी लोग तोहरे सब कहूँ कब्बो मरी गवा सांप देखो तो ना चलायो। सांप मरी गवा कहते भरे बिखनाई असर करी ऐसा ना होते। जिंदा मरी गवा या मरी गवा जिस दिखाए वाला सांप का हाथ से नहीं पकड़े के चाहिए।
5: सर मरी गवा सांप भेटाई गए पर का करे के चाहिए?
4: सांप मरी गवा जिस दिखाए के बाद पूर्ण रूप से मरा नहीं हो सकत है, अथवा मरी गवा सांप कुछ देर तक डसियो सकत है। वही से सांप मरी गवा है तब वो हाथ से नहीं चलावे के चाहिए, बल्कि लम्बा लाठी से चलाई के मरा है या नहीं यकीन करे के चाहिए।
6: मरी गवा सांपन से सावधान रहा जाए, मरी गवा या मारी गए सांपन का पकड़े या चलावे के काम न करा जाए। मरी गए कुछ देर तक सांप डस सकते हैं, संभव हो तो सांप के फोटो लिया जाए और पहचान के खातिर विज्ञ से संपर्क करा जाए।
7: सर्पदंश संबंधी विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नक्चरवे के सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के आधिकारिक वेब पेज www.snakebitesnepal.org में देख सका जाता है।
8: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
9: कता हो काका लहर लहर गर्दै
10: कहाँ हुन्थ्यो बाबु? यो छोराले विदेशबाट पठाइदिएको एलईडी टिभी पनि बिग्रियो, इन्भर्टर पनि त्यस्तै छ, छोराले अमेरिकाबाट पठाइदिएको यो आइफोन के गर्दा भइमा खस्यो यो पनि त्यस्तै छ। त्यही भएर म त आज बिहानै उठेर हेर बाबु, यो 4 नम्बर जितपुरमा रहेको शैलेश्वरी इलेक्ट्रोनिक सर्भिस सेन्टर एन्ड मोबाइल मर्मत सेन्टरमा गएर बनाएर लिएर साँझ चडक्क बुढाबुढी बसेर टिभी हेरमला नातिले मोबाइलबाट फोन गर्ला बाउला भनेर बिहान बिहानै दौडेको छु।
9: मेरा पनि घरका सबै इलेक्ट्रोनिक सामानहरू बिग्रेर कामै नलाग्ने भएका छन्, कहाँ लाँदा ठिक हुन्छ होला?
10: ल होइन, सँगै जाम शैलेश्वरी इलेक्ट्रोनिक सर्भिस सेन्टर तथा मोबाइल मर्मत केन्द्र 4 नम्बर जितपुरतिर।
9: हजुर, हाम्रा सेवाहरू,
10: हामी कहाँ सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू मर्मत गरिनुको साथै आइफोन, एन्ड्रोइड फोन, मोबाइल फोनहरू दक्ष प्राविधिकद्वारा चिप लेभल मर्मत सुविधा उपलब्ध रहेको जानकारी गराउँछौ, साथै नयाँ मोबाइल पनि पाइन्छ। अन्य विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क शैलेश्वरी इलेक्ट्रोनिक सर्भिस सेन्टर तथा मोबाइल मर्मत केन्द्र 4 नम्बर जितपुर कपिल वस्तु प्रोप्राइटर संजय श्रेष्ठ एन्ड विजय श्रेष्ठ 98 46 19 125 र 98 572 4।

0: पटक बैंक अफ द ईयर 2024 र 2025 को सम्मान सिटीजन्स बैंक विश्वास को नाम सिटीजन्स बैंक हजुर को प्रगति को सहयात्री
1: कमिंग सर।
2: हाँ आओ। तुमका टॉयलेट से आवे के देर हो गया संजू, कुछ समस्या होगी का?
1: कुछ नहीं भवा है सर, टॉयलेट के बगल में सांप देखें देर लाग के घूम के आवत रहें, एक छिन तक अगोरत के हलचल ना है की मरी गवा सांप हुई कह के जाने के बाद टॉयलेट जाए के आये।
2: मरी गवा सांप के चलावे के काम तो नहीं की हो?
1: नहीं चलाये सर।
2: विद्यार्थी भाई बहनी लोग तोहरे सब कहूँ कब्बो मरी गवा सांप देखो तो न चलायो। सांप मरी गवा कहते भरे बिख नाई असर करी ऐसा नहीं होते, जिंदा मरीगवा या मरीगवा जिस दिखाए वाला सांप का हाथ से नहीं पकड़े के चाहिए।
3: सर मरीगवा सांप भेटाई गए पर का करे के चाहिए?
2: सांप मरीगवा जिस दिखाए के बाद पूर्ण रूप से मरा नहीं हो सकत है, अथवा मरीगवा सांप कुछ देर तक डसियो सकत है। वही से सांप मरीगवा है तब वो हाथ से नहीं चलावे के चाहिए, बल्कि लम्बा लाठी से चलाई के मरा है या नहीं यकीन करे के चाहिए।
4: मरीगवा सांपन से सावधान रहा जाए, मरीगवा या मारी गए सांपन का पकड़े या चलावे के काम न करा जाए। मरी गए कुछ देर तक सांप डस सकत है, संभव हो तो सांप के फोटो लिया जाए और पहचान के खातिर विज्ञ से संपर्क करा जाए।
5: सर्पदंश से संबंधित विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नक्चरवे के सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में देख सका जात है।
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
7: पाल्पा भैरव मेडिकल हल बुटवलको अत्यन्त जरुरी सूचना।
8: विगत 25 वर्षदेखि मुटु तथा छाती र छाला रोगको सफल उपचार सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा यही असोज 25 गतेदेखि काठमाडौँ B&B हस्पिटलका हाडजोर्ले नसा तथा लिगामेन्ट विशेषज्ञ र आमदा अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा समेत बिरामी जाँच गरिने भएकोले उल्लेखित समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।
7: ब्लड प्रेसर, सुगर, थाइराइड, मुटु रोग, छाती रोग, ग्यास्ट्रिक अल्सर, निमोनिया, चक्कर लाग्ने, लुतो, दाज, पुतले, दुबे, चाया, डन्डीफोर, पुरानो घाउ खटिरा, यौन दुर्बलता, सेतो पानी बग्ने, यौनाङ्गका घाउ खटिरा, कपालको रौँ झरिरहने, हाड जोर्नीका समस्याहरू, प्यारालाइसिस, जोर्नीहरू दुख्ने, नचल्ने, नसा च्यापिएको, ढाड कम्मर दुख्ने, मेरुदण्ड र घुँडाको समस्या, लिगामेन्ट च्यातिएको, भाँचिएको, हाड जोर्नीका विशेष अपरेसन र बालरोगसँग सम्बन्धित सबै समस्याहरूको विशेषज्ञ चिकित्सकहरूद्वारा जाँच तथा उपचार गरिन्छ।
8: सम्पर्क पाल्पा भैरव मेडिकल हल श्रवण पथ बुटवल साझा हस्पिटल को अगाडि।
7: सम्पर्क नम्बर 071534905, 071553905 र मोबाइल 98570078010।
9: के छ हो दुर्नुस भाइ, भाले बगेर कता के को भाकल हौ?
10: सुन्तालीका जिउमा दाग आएर हात खुट्टा पनि झन्झम गर्छ भन्छ, जान्नेलाई देखाएको देउताको श्राप लागेर यस्तो भएको रे, त्यसैले भाले चलाउन।
9: यस्तो पनि हुन्छ? यो त कुष्ठरोगको लक्षण जस्तो छ। शरीरमा यस्तो रातो खोस्रो दाग देखिनु, अनुहारको छाला तथा कानको लुटी बाक्लो हुनु, शरीरमा गिर्खाहरू देखा पर्नु, दागमा छुँदा थाहा नपाउनु, मांसपेशीहरू कमजोर हुनु कुष्ठरोगका लक्षणहरू हुन्। तुरन्त स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार गराइहाल्नुहोस्।
10: तर जान्नेले त यो देउताको करामत भन्छ त?
9: यो देउताको होइन, कीटाणुको करामत हो।
11: भाकल साकल छोडु धुर्मु, उहाँले भने आफै जतार औषधि खान थालिहाल्नु पर्छ कि?
12: कुष्ठरोगको समयमै उपचार गराऊ, अङ्गभङ्ग हुनबाट बचाऊ बचाऊ।
13: जनहितका लागि जारी सन्देश, नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग।
14: अब सुन्नुहोस् श्री स्टिल्स रेडियो कथा भाग एक। हाम्रो शर्माजीले आफ्नो सपनाको घरलाई श्री FE550Dले एकदम बलियो गरेर बनाउनु भएछ। नयाँ घरमा सरेदेखि नै उहाँको परिवारले हाँस्दै खेल्दै आफ्नो जीवन जिउन थालेछन्। सब एकदम खुसी हुन्छन्।
15: तर त्यसको केही दिनमै एकदम ठूलो भूकम्प आउँछ। रेडियो सुन्दै गर्नुस्। अब बाँकी कथा अर्को भागमा। श्री FE550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
16: नमस्कार, तपाईले सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज सुनिरहनु भएको छ। यो समय हो आधुनिक गीत संगीतको। तपाई अबको क्रममा नेपाली बजारमा भित्रिएका नयाँ तथा पुराना आधुनिक गीत संगीतहरू सुन्न सक्नुहुन्छ।

तिमी बिनाको जिन्दगी पनि के जिन्दगी? जहाँ तिमी छैनौ यो संसारै शून्य लाग्छ। मेरो मन त चाह यति मात्रै हो, बस तिमी मलाई जिन्दगीभर कहिले नछोड है।

0: gentlemen, may I have your attention, please? 3, 2, 1.
1: Maybe 9.6, Friction, Lost Station Radio.
2: बुद्ध आवाज
3: कैंसर को संपूर्ण उपचार विराटनगर में सभी प्रकार का कैंसर को उपचार शल्यक्रिया रेडिएशन सहित न्यूक्लियर मेडिसिन सेवाहरू उपलब्ध छ नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट क्यान्सरको उपचारका लागि यति एयरलाइन्स मार्फत दुईतर्फी निशुल्क टिकटको व्यवस्था गरिएको छ र उपचारका लागि पालो खोज्नु पर्दैन विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल अन्तर्गत नेपालको नम्बर 1 क्यान्सर हस्पिटल विराट क्यान्सर इन्स्टिच्युट विराटनगर थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9761002530
4: अरे सुन जाइन के भयो आसक के भयो हामीले साथीको साँप काटिस
5: का हो बहिनी आप कहाँ चिल्ला बजा छ अरे ये भुइँमा के हो
4: सुन जाइन भैया हमरी दोनों जनी का हाथ काटे आ रहे हमरी साथी का सांप काट ली अब कहाँ कर रहे एक जल्दी उपचार केंद्र पहुँचा है मिलत तो ठीक रहा
5: ओहो ऐसे समय पर एम्बुलेंस और चार चक्का गाड़ी खोज के अगोर के नए बैठे चाहिए यह नक्चरवे के गांव में हमारे एक जने मोटरसाइकिल भवा साथी हैं फोन करी थे हम आप न घबरावा जाए साथी का ध्यान दिया जाए हेलो मुकेश तू तुरंत मोटरसाइकिल लेके यहाँ आओ तो यह एक जनी बहनी का सांप काट ली है इमरजेंसी होगा तुरंत उपचार केंद्र ले जाए पड़ा राजमार्ग चौराहा से 100 मीटर पच्छू बायोवर हन हमरे मुकेश जल्दी आओ ना सब काम छोड़ के
6: होता है संतोष हम मोटरसाइकिल लेके चले आए
5: सुना जाए बहनी सांप काट लिया व्यक्ति का जितना हो सके उतना जल्दी एंटी वेनम उपलब्ध रहा स्वास्थ्य केंद्र में ले जाए चाहिए ऐसे समय पर जल्दी होने वाला यातायात के साधन छनोट करके चाहिए यदि मोटरसाइकिल की व्यवस्था है तो अपने और सवारी चालक के बीच में सांप काट लिया व्यक्ति का सुरक्षित हुए समय से तुरंत उपचार केंद्र पहुँचा के चाहिए तू देखो मुकेश मोटरसाइकिल लेके आएगा हमारे विश्वसनीय साथी है हम तुरंत बीमरिया का अपने और मुकेश के बीच में रख के मोटरसाइकिल से उपचार केंद्र पहुँचाए थे आप हमारे साइकिल लेके वहरे आवा जाए
4: हो थे भैया बहुत ही सहयोग करा गए चला जाए जल्दी चला जाए
7: याद रखा जाए सांप के डसे के बाद मोटरसाइकिल स्वयं से भी बुलावा जाए सप्तंश उपचार केंद्र जाए के जान बचावा जाए
8: यदि समय पर उपचार कई मिले पर सांप डस लिए व्यक्ति का बचाए सका जाता है और इससे होए वाला मृत्यु दर कम कर सका जाता है सांप डस लिए व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में ले जावा जाए ये वह व्यक्ति के जीवन बचावे बहुत मदद करत है
5: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे और नक्चेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कह के पता लगावे आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाके आवश्यक जानकारी ले सका जाता है
9: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
10: युनाइटेड अस्पताल बाढगंगा चार छाकुरापुर कपिलवस्तुमा बिरामीहरूका लागि थप नयाँ सुविधाहरू
11: कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर गोविन्द रावत छाती तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या मुटु रोग मृगौला रोग पेट र आन्द्राको समस्या कलेजो थाइराइड र मधुमेह सहितका रोगहरूको पूर्ण परामर्श र उपचार
10: हाड जोड्ने नसा तथा बाथरोग विशेषज्ञ डाक्टर समीर खानद्वारा हाड जोड्ने सम्बन्धी समस्या हड्डी ढाँचिएको रजहरू राख्ने निकाल्ने नसा च्यापिएको लगायत बाथरोग विशेषज्ञ सेवा बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन परामर्श तथा उपचार सेवा उपलब्ध छ वरिष्ठ फ्यामिली फिजिसियन तथा जीपी सर्जन डाक्टर कुण बहादुर घरतीद्वारा विशेषज्ञ सेवा सहित मेजर तथा माइनर अपरेशनहरू पाठेघर फाल्ने चिरेर बच्चा निकाल्ने नर्मल डेलिभरी सेवा एपेन्डिसाइटिस हाइड्रोजिल हर्निया पित्तथैलीको ढुङ्गा निकाल्ने लगायतको साना तथा ठूला अपरेशनहरू वरिष्ठ एनोस्थेसियोलोजिस्ट डाक्टर सुमन श्रेष्ठद्वारा क्रिटिकल केयर परामर्श तथा उपचार सेवा अन्य ओपीडी सेवा बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म डाक्टर योगेन्द्र थापाद्वारा 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा
11: यूनाइटेड अस्पताल बाढ़गंगा 4 ठाकुरापुर कपिल वस्तु। संपर्क 076-550-200, मोबाइल नंबर 98-570-55-138।
10: अब ढुक्क हुनुहोस्, विशेषज्ञ डाक्टर को सलाह लिनुहोस् यूनाइटेड अस्पताल मै।
2: लुम्बिनी हस्पिटल एन्ड टेक्निकल कलेज प्राली बुटवलमा आधुनिक विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा शुरू भएको अनुरोध।
12: बुटोलमै पहिलो पटक शरीरको कुनै अङ्गको लिगामेन्ट च्यातिएको, स्पोर्ट्स इन्जुरीज साथै हाड जोर्नी, नसा तथा ट्रमा वा दुर्घटना सम्बन्धी बिरामीको उपचार बीएनबी हस्पिटल काठमाडौँबाट अर्थोस्कोपी सर्जरी र स्पोर्ट्स इन्जुरीमा फेलोसिप गर्नुभएका डाक्टरबाट आधुनिक विशेषज्ञ सेवा शुरू भएको छ। विशेष गरी हाड जोर्नी भाँचिएको, लिगामेन्ट च्यातिएको बिरामीहरूको अपरेशन दूरबीनको माध्यमबाट गरिन्छ।
2: साथै वीर अस्पताल नेम्स काठमाडौँका फिजिसियन डाक्टरबाट उपचार सेवा र वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टरबाट इको ईसीजी को माध्यमबाट मुटु तथा छाती रोगको उपचार भइरहेको जानकारी गराउँदै पूर्ववत सेवाहरू,
12: नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा,
2: स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ सेवा,
12: जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी विशेषज्ञ सेवा,
2: शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा,
12: दाँत तथा मुख रोग विशेषज्ञ सेवा,
2: नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ सेवा,
12: हिस्टो साइटो बायोप्सी हार्मोन जाँच गर्ने प्याथोलोजिस्ट डाक्टर सहितको प्रयोगशाला,
2: फिजियोथेरापी विशेषज्ञ सेवा,
12: आईसीयू एनआईसीयू डिलक्स बेड सहितको इन्डोर सेवा सञ्चालन भइरहेकोले निजी क्षेत्रको जेठो एस हस्पिटलबाट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा लिनुहुन अनुरोध छ।
2: सम्पर्क लुम्बिनी हस्पिटल एन्ड टेक्निकल कलेज प्राली बुटवल छ, साबिक लुम्बिनी नर्सिङ होम प्राली, फोन 071-531-641 र 535-641।

0: रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 MHz मा सुन्न नभुल्नु होला।
1: यति बेला साँझको 7 बज्यो।

0: 89.6 MHz
1: हिमाल पहाड़ तराई।
2: दादू एक कप चाय के 30 रुपया कतरा महंगा। आजकल तो कुछ चीजों में फिर पैसा वसूल नहीं हुई ना।
3: उठ जे भाई, अब एनसेल में पैसा वसूल
2: हो का?
3: हो जे, एनसेल में आप खाली 18 रुपया में एक दिन अलग 30 मिनट ऑल नेपाल कॉल संगे मज्जा से बटवाई सकती। तब नहीं हुई थे पैसा वसूल, गजब बात है। अब मैं फिर पैसा वसूल करें। आजू *123# डायल करी या एनसेल ऐप में जाके ये पैक खरीद करी। एनसेल नेपाल के लग।
4: ओहो काका, अनुहार न्यारो बनाएर झोला बोकेर टाढै लाग्नु भयो कि क्या हो?
5: हेर न भतिजी, म त पायल्स भएर निकै समस्यामा पो छु त। दिशा गर्दा मासु बाहिर निस्किन्छ, रगत पनि आउँछ, अनि तेरो काकीलाई पनि पाठेघरको समस्या छ। त्यही भएर हामी त आयुर्वेदिक औषधि उपचार गर्न काठमाडौँ जान लाग्यो नि।
6: ह्या काका, त्यसको लागि तपाईँले चिन्तै नलिनुहोस् न। 2 दशकदेखि सेवा दिँदै आएको हाम्रै गजहेडा बजार बुद्ध चोकमा भर पर्दो र विश्वासिलो उत्तम फार्मेसीमा थप सेवा सहित कुकुब आयुर्वेद औषधालय छँदै छ नि। तपाईँ हुनुहोस्, तपाईँको समस्याको समाधान सफलतापूर्वक हुन्छ।
7: हाम्रा सेवाहरू पायस, मलद्वारमा मासु पलाएको, दिशा बस्दा रगत देखिने चिलाउने, फिस्टुला मलद्वारको 2-3 अङ्गुल छेउछाउमा ससाना घाउ खटेर आउने, भिप निस्कने, फिसर मलद्वारमा चिरा परेको, दिशा बस्दा अत्याधिक दुखाइको महसुस हुने,
6: महिलामा हुने समस्या महिनावारी गडबडी, सेतो पानी बग्ने, तल्लो पेट दुख्ने, आङ खस्ने, यौनाङ्ग चिलाउने, बाझोपन तथा यौन चाहना नहुने, पुरुषमा हुने समस्या शीघ्र पतन, उत्तेजनामा कमी, यौन दुर्बलता, यौन चाहना नहुने, पेट सम्बन्धी समस्या, ग्यास्ट्राइटिस, ग्यास्ट्रिक अल्सर, गानोगोला, अपच, कब्जियत, आइबीएस, जन्डिस, मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार तथा परामर्श सेवा, पुरानो भन्दा पुरानो बाथ, युरिक एसिड तथा गर्दन ढाड कम्मरमा नसा च्यापिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, अत्याधिक पोल्ने, सिल्का हान्ने तथा अन्य हाड जोड्ने सम्बन्धी समस्याको पञ्चकर्म, अग्निकर्म तथा फिजियोथेरापी सफल उपचार,
7: छाला सम्बन्धी समस्या, नयाँ तथा पुरानो एलर्जी, अनुहारको चाया पोतो डन्डी फोर, दाग सेतो दुबी, छालामा चाला आउने तथा सोराइसिस रोगको पञ्चकर्मद्वारा सफल उपचार तथा परामर्श,
6: दैनिक बीएमएस डाक्टर दिनेश थारूद्वारा चेक जाँच तथा परामर्श सेवा, प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर हरिशंकर चौधरीद्वारा चेक जाँच तथा परामर्श सेवा, सम्पर्क उत्तम फार्मेसी कुकुब आयुर्वेद औषधालय, बारदिन्दचार बुद्ध चोक कपिल वस्तु, मोबाइल 98473-64666 र 98214-15291।
7: सुन्नुहोस् त, हामी कहाँ बिना अपरेशन छाल सूत्र विधिद्वारा पायस, फिस्टुला र फिसरको सफल उपचार गरिन्छ।
8: ओहो, देखा जाए ना मूस कुदस है।
9: ओहे तो बरसात के समय है, बखार के आना खुले है कि मूस आए तो अब मूस हेरा सपबो आई सकत है।
8: ओहो हाँ, तो सही है, याद हुई गवा। घर के आसपास ढाल झुंगा बढ़ के बहुत बड़ा हुई गवा है, काटे रहा।
9: हाँ ऐसा करा जाए, तब काल सवेरे पूरी तरकारी नाश्ता करा जाए और सब परिवार मिलकर सर सफाई करे के हुई और आसपास के फोहर व्यवस्थापन करे के हुई ना।
8: होता है ऐसे समय पर तो बड़वार घास फूहर गंदगी रहा जगह पर सांप लुकाई के बैठा हो सकत है ना।
9: वही से तो कही थे, बिटिया समीरा, बेटवा विवेक, तोहरे सब और हम मिलकर घर के आसपास का बड़वार घास काट दिया जाए, काल लाएगा जलावन घरे से कुछ दूर व्यवस्थापन कर दिया जाए, जहरी के आना सांप मूस न हले के में से मरम्मत कर दिया जाए और घर के आसपास खाली और साफ होने के बाद सांप आवे के अपने कम हो जाए न।
8: हाँ काल संचरो हुए सवेरे सब फुर्सते में हो जाता है।
10: सांप बरसात के समय में सूखा जगह पर रहना पसंद करते हैं। यह मौसम में अपने वास स्थान पर पानी चल जाए नाते सूखा जगह के खोजी में वो लोग बाहर निकलते हैं।
11: मूस मुर्गी जैस चारा के खोजी करे क्रम में सांप मानव बस्ती नेरे आ सकत है।
10: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे और नक्चेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कह के पता लगावे आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाके आवश्यक जानकारी ले सका जाते है।
12: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
0: क्यान्सरको सम्पूर्ण उपचार विराटनगरमै सबै प्रकारका क्यान्सरको उपचार शल्यक्रिया रेडिएसन सहित न्युक्लियर मेडिसिन सेवाहरू उपलब्ध छ। नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट क्यान्सरको उपचारका लागि यति एयरलाइन्स मार्फत दुई तर्फी निशुल्क टिकटको व्यवस्था गरिएको छ र उपचारका लागि पालो पुग्नु पर्दैन। विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल अन्तर्गत नेपालको नम्बर वन क्यान्सर हस्पिटल विराट क्यान्सर इन्स्टिच्युट विराटनगर। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9761002530।
13: के छ हो धुनुस भाइ, भाले बोकेर कता
14: भाकल?
13: के को भाकल हौ?
14: सुन्तलीको जिउमा दाग आएर हात खुट्टा पनि झन् झन् गाटा भन्छ। जान्नेलाई देखाएको देउताको श्राप लागेर यस्तो भएको रे, त्यसैले भाले चढाउन।
13: यस्तो पनि हुन्छ?
14: नपाक्लाई भएर हिँड्नु न।
13: यो त कुष्ठरोगको लक्षण जस्तो छ। शरीरमा यस्तो रातो फुसो दाग देखिनु, अनुहारको छाला तथा कानको लुटी बाक्लो हुनु, शरीरमा गिर्खाहरू देखा पर्नु, दागमा छुँदा थाहा नपाउनु, मांसपेशीहरू कमजोर हुनु कुष्ठरोगका लक्षणहरू हुन्। तुरन्त स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार गराइहाल्नुहोस्।
14: तर जान्नेले त यो देउताको करामत भन्छ त?
13: यो देउताको होइन, कीटाणुको करामत हो।
15: भाकल छाकल छोडौँ धुर्मु, उहाँले भने आफै जताएर औषधि खान थालिहाल्नु पर्छ कि।
16: कुष्ठरोगको समयमै उपचार गरौँ, अङ्गभङ्ग हुनबाट बचौँ बचाउँ।
17: जनहितका लागि जारी सन्देश, नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग।